0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: अब उन्हें बात आता
3: डाइ
4: अब इन्हों का अंपिया वो भी मारुनी है ने अमे वेर वॉके अब उन्हें ना वेर वेर वॉक अमे उन्होंने रग जागुआ
2: रग जागुआ
4: रग जागुआ